0: Ay, puro imagina bajar a la
1: de la casa. ¿Qué
0: कीर्तन कीर्तन से सुनिया सफला हो जाएगा करो अरदास जिन्हें धरती में पुते है उन्हें पानी जरूर मिले जिन्हें धरती में पुते है उन्हें पानी मिले जिन्हें खोजे है उन्हें मार्ग मिलता है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है और ये अरदास मेरा धन गुरु नानक पर है अब पहले सेवक बनेगा पीछे प्यार नाथ हरि बोल

गुरुजी से बाबा जी ने मने, जिन्होंने मने उन्होंने वास्ते साख्या। बाबा जी कह लगे निंदा ना करे करो पाजी। एक प्रेमी उठ के खड़ा हो गया, बाबा जी असी कलयुगी जीव, असी तो निंदा भी करते हैं उपत भी करते। बाबा जी कह लगे क्यों? इन्हें क्या महाराज, असि स्वार्थी बंदे हैं, जिथों साडा मतलब हल हो जाए, स्वार्थ पूरा हो जाए, उनकिया परिवार के कोल बंदे ये बड़ा उपकारी है, बड़ा दानी है, बड़ा महापुरुष है। अंदर का मन भावे जानता हो लूज करैक्टर, एदा करैक्टर चंगा नहीं, पर इस वास्ते चंगा कह लग जाने हैं साडा मतलब पूरा हो। दूजे पासे असी उत्ते चिकड़ सुटन लग जाने, और बुरा कह लग जाने हैं जेदे को साडा मतलब पूरा ना। अंदरला मन जानता हो ये नेक इंसान, इस कोई गलती नहीं, पर इस वास्ते क्योंकि साडा मतलब हल नहीं होया, इस वास्ते निंदा कर, क्योंकि दुनिया दो रंगी है, दुनिया दो रंग। हजूर एक दिन लेते हुए सन किराने बात की हुई, मरदाने नाल मिठे मिठे वचन पे करते सन, और जिमीदारा दिया लड़कियां कामिया रोटी देने वास्ते जा रही सन। एक ने कहा दूजी नी भैने वेख घर बार छड़िया है, साल बनिया है, ते अजे भी सराने पाल ल। हजूर ने अपने सराने बाह की हुई, किसी ने बीबी ने वचन किया तो सतगुरां ने वो जी बाह सी अडोल कढ़। तुझी कह लगी वेख जी भैने तेरी गल का कितना गुस्सा किया है। हजूर मुस्कुरा पे कह लगे वो मरदाने दुनिया किसे पासे भी छड़ आखो श्री भाई, किसी पर दुनिया। बाबा जी कह रहे सन मकान भी नहीं एक होती है, पर दुनिया दिया दो नहीं आखो देवियां दो नहीं है। जे चिटे कपड़े पा लो ये तो बड़ी आकड़ होगी, जे मेले पा लो कहते भुखा मरन लगे हैं, दो नहीं है जो दो नहीं। तो प्यारी सात संघ से उस प्रेमी ने किया बाबा जी जिन्हें को मतलब हल हो जाए ओदिया तरीफा, जिन्हें को सवाल पूरा ना हो चंकी भी सक। साडा तो सुभाव बने अमन सिंह महाराज कह लगे चंगा फिर उत्सुत भी करया करो ते निंदा भी करया करो। बाबा जी एक ही बचन उत्सुत भी करिए निंदा, बाबा जी कह लगे तुहाडा सुभाव बन गया है ना करया करो। सारी संगत हैरान होगी, नहीं मैं आज कोई सोच नहीं पाओ। बाबा जी कह लगे ये तो अगर सुभाव बन गया उसको तो निंदा करना, जे निंदा करनी है तो अपनी करो, सुभाव बने हैं, जे निंदा करनी है अपनी करो, सब अवगुण में गुरु जी ये गुरुमुख लिखा। कबीर जी गुरुमुख सन, कहते कबीर हम सबसे बुरे, अति बुरे होकर चंगे बनने की कोशिश कर, पर चंगे बनना यह सब तो पहला निशाना है, जिन्हें डालियां फल लगते हैं वह जुड़ी है। कबीर जी ने कहा कबीर हम सबसे बुरे, हम तक भरो सब कोए, जिन ऐसा कर हो दिया मीर हमारा। बाबा जी कहने लगे अपनी निंदा कर, अपने कर्मों की निंदा कर, जो उसत करनी है तो मेरे धन गुरु नानक जी साहब की उसत करें करवाए करी पढ़िए ना उस कर कर जीवा जी मैं।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पूछ ये पाई तू क्यों रोना है ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़ ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है फिर क्यों ना

एक भय है को ना सके पहचान, नाम जप के राम ते निर्मल हो गए जिन्होंने जपया श्री वाहे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है को ना सके पहचान, नाम जप के राम ते कबीर विच कोई भेद ही ना रह गया। बल्कि कबीर जी कहंदे हन के कबीर मन निर्मल भया, नाम जप के जदों मन निर्मल हो गया ता मैनू रब लभण दी लोड़ ना पई, रब मेरे मगर मगर तुरया आया, मैनू लभदा।

एक मुसलमान वीर ने कलम चुकी ते तवी दा हाल लिखना शुरू किया। गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ओ कहंदे ए उन्हां दा खेल सी। कौन है चंदू, इतिहासकार ने इतिहास लिखदियां लिखदियां चंदू ते दोष दिता, जहांगीर ते दोष दिता, लेकिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी दास ने बाणी पढ़ी, किसे पंक्ति विच भी किसे नु उलांबा नहीं दिता। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाह, किसे भी थां ते कोई उलांबा नहीं दिता। कहंदे ने के गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ते तवी किस तरह दी सी। अंगारों की मानो तपी लोह पर ही, जो बैठे हुए हैं समाधि लगाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों देग विच आसन लाया, हजूर कहंदे चंदू तैनू पता है एक गल दा, एक सोने दा ढेला, एक सोने दी डली किसे पुरुष ने चाया कि इस डली दे सौ टुकड़े कर दें। उसने उस डली दे सौ टुकड़े कर दिते। हसूर कहंदे ने चंदू सौ टुकड़ियां तो बाद ए दस उसकी कीमत कितनी कटेगी। चंदू लाजवाब सी, किवें दसे एक डली दे सौ टुकड़े कर दिते। टुकड़े सामने पए ने, है ता सोना पर सोने दे टुकड़े हो गए। एहो ही ता पावन शरीर, तख्त ते बहण वाला अज चारे पासे शरीर ते छाले हो गए। टुकड़े हो गए शरीर दे, सोने दे टुकड़े हो गए। चंदू चुप है। हसूर कहंदे चंदू जे किसे शरीफ नू मुसीबत विच पा दिता जाए, दुखां दियां दीवारां उहदे आसे पासे बना दित्तियां जाण, उहदी शराफत कितनी क कटेगी। तां गुरमुख किसे गुरमुख ने लिखिया, शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती। की होया जे तू तवी ते बठा ले, की होया जे तू उबलती देग विच बठा ले, की होया जे तू सिर ते रेत पाई, की होया जे शरीर ते छाले हो गए। शरीफों की मुसीबत में शराफत कम नहीं होती, करो सोने के सौ टुकड़े के कीमत कम नहीं होते। भला कदे सोने दी भी कीमत घट हुई, सौ टुकड़े नहीं भावें कोई हजारों टुकड़े कर दे कीमत नहीं घट हुंदी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਮੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਬੈਠੇ, ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੋ ਐਸੀ ਕੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਪੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आज जो गद्दी है इस पे ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लेते हुए आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए, सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नूं खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, तां खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लैणे को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।